बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता।

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे ओढ़े वस्त्र का जल

अकाल मूर्त अजूनी सहंगुर प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वण जात हर पात निहिंजे रूप रंग रवि श्री भूकर सत्य है अचल मूर्तन हो प्रकाश अमित पूज कह जिंद्राम शाहू शाहन गणेश फिर भवन में ही सुर नारा सुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर स्वभाव चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब ना दी आवारी नानक दास संत पाछा प्रयु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दया।

सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोसे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमृतचा दीवान, सच्चा तेरा उपमुचा फरमान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चा है सबदान, सच्चा है सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच तिहाइन सच।

बहुत अनंत लाटू मधानियां पंखी पौंदियां लैन नसा सूए चाड़ पवाइया है जंत नानक पौंदियां गणत नंत बंधन बंद कुहाए सो पै किरत नचै सब कोय नच नच हसें चलें।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सदियां मन संतोख उपजे देने का विचार दे दे मंगे से सगुना सोभ करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बेकार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे सुख है जाने तिलक तेरी सार नानकू भगता पुख सलान सच नाम आधार।

चढ़ चढ़ पवहारी नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुख है जिन विचों मोह चुकाया तो मेरी जा रहे।

अनमल खाई सिर छाई पाई मूर्खन दे पत गवाई बिना है कि ठाए ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नगर करे सो पाए आस दे से

सच्चा देखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्त है चंगे से ही के पौड़ी तुर कर जिना को तुर पाया ता तिन्नी खसम ते आया है न जलता के उसके जनाई तुर वेख की जग तू आया एक

का पेड़ तो सीख खाई, हाथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेश तहां ले पूजे पुराण।

मत फिटे रे मत फिटे ए अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन लिखे चुरी बहे तौलन कु सच आईए सुध होवे ता सच पाए पौड़ी जित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे बड़ाई आपे ही करम कराएंदा वडो वडा वड़ मेतनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना का कराएंदा कर मंगल।

बसे नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बैंड पिंडा तोय सूचे से नानकार जिन मन बसे असोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हर सवार आ

एक रही चाकरी जित पोगस ना जाए नानक सेल कांडी है जे सेती ही खसु समाए बोड़ी नानक अंतर जापनी हरता के पार बारे अपराय साथी फिर आप कराए बार एक नगन पीड़िया एक चुरी चढ़े विषय

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया, ते मैल नाल पारा भी हो।

जे तरना है भव जल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओ ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जद मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा सच तेरी जेगा ओ सच दा उपाशक सच वंडन वाला सच दा प्रचार करन वाला नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक कहन लगे मरदाने आ चल तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा लेकिन ओदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना मैं सच्चे नू रिझा लवांगा ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावां

विश्राम की भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चलते बनने। पर भोजन तो कर लो ना, आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करते ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए आज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलता है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तो तेनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करते हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करते हो, कदे अपने वल वेंदा है, कदे बाबे वल वेंदा है।

चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं, तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ।

सतगुरु कहन लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं। पर जे तू चोरी ना करें ते चंगा, ए माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा। सतगुरु कहन लगे दो बचन होर साडे चेते रखे, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकदा।

अंत न जाई लख रहा जात मह जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरे तो सच्चा साहब शिव सवाल जिन की तीसो पार पे आ।

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

लड़ाई विच ओ हाल करना है कि दुनिया नू हैरान कर देना है। ए गल क्यों कही, आओ इस बारे

इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी होईयां, हर लड़ाई विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जित हुई। आखिर औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली तो फौज भेजी, कुछ पहाड़ी राजियां दी फौज

जे सिर देण दा वेला आया फिर एहसान ना करियो पैर पिछे ना पायो पर जे तुहानू अपनी जान प्यारी सिखी प्यारी नहीं फिर इस तरह करो एक कागज लाओ उस कागज ते ए लिख दियो तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नु प्यारी समझे कागज लिया उत्ते लिख दिता तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई भाई मान सिंह अपने साथियों समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए पर गुरु डोलिया नहीं गुरु डरिया नहीं क्योंकि गुरु सच ते खलोता है सच वास्ते लड़दा है अपने भले वास्ते नहीं ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

आनंदपुर साहब दे किले तो निकले, गुरु नू ए विदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख ने। अपने घरां नू तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियों दे नाल अपने घरां नू पहुंचे, घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नू कहन लगे, असी ते गुरु नू किले विच छड़ के आ गए, किले नू घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नू छड़ के आए हां, ते नाल ए वी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख ने। ए गल घरां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां, उन्हां ने कहा ठीक है, अज गुरु नू छड आए, अपनी जान नू प्यारी समझ के, एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे, पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तो सिख गवा के जीवना, को जीवना है, एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनिया जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी, साडे पति तन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नू छड़ के आए हो, मौत तो बहुत डर लगदे, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो इस साड़ियां चुनियां ले लो, पग्गां ला दे, अपनिया चूड़ियां ला के अगे रख दितियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दियो, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी लड़ाई विच हिस्सा लवांगियां, असी गुरु दी सेवा करांगियां। जदों ए गल घरां वालियां ने कई फिटकारां पईयां, खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल कीती, दुनिया दे सुख बदले गुरु नू छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है, धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदियां मरना, असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है, आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहिबां ने छड़ दिता, क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते, किला छड़िया, जिन्ना कुरान शरीफ दी कसम खादी उन्ना कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्ना आटे दी गऊ बना के कसम खादी उन्ना भी कसमां तोड़ दित्तियां, गुरु साहिबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहिबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच।

गुरु साहब का पता लगा रहे ने। ये खबर घर घर फैल गई कि वड्डे साहबजादे चमकौर दी गढ़ी शहीद हो गए, छोटे साहबजादे सरहंद दी एनियां विच चुने गए ने, ते गुरु साहबां दा

बादशाह मैनू सजा देवेगा। ता गुरु साहब बन गया जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं। अज भी इहो जे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने सिखी छड़दे ने अमृत तों दूर ने, पर जिहड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं अपने गुरु दे उपदेश ते नहीं चलदे दुनिया दे सुख

करेंगे कहां जो प्रभ काज ना अहे इह। इस जीवन नु की करना है जे गुरु दी खुशी ना मिली। सिखी गुआ के जीवे ता क्या जीवे। सेवा कर दिया सिखी निभा मौत होवे ता जीवन सफल हो। ए गल भाई मान सिंह ने कही ता माई भागो हाथ विच सांग फड़ी इसवी लकीर टपी ते ए गल कही भरावो भैन मर्द है भैन लड़ेगी वीर घरां नूं जाण। ताना सुनिया सारिया लकीर टपी हुण सलाह कीती

ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने ते उन्नू बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दियां लड़दियां 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, किरपाना कढ़ियां, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़ दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणंग शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोउ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माही कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करनते सो छाले उछाले म्यान विच तेग कटी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटाकट जोए कटाकुट कटे चटापट मारे खटाखट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह का डंका बजाया वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है सेंट दा पे है सा टुटदे ने हुण भाई मान सिंह

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे ओ बिदावा।

खत्म नहीं होवेगा। पैमा सिंह पूरा हो गया। आपां कई बार कह देने कोई मरे कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदों मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जिउंदा है, जिन्हों रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने, वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा है। किन्नी कृपा होई भाई मां सिंह, एक ओदा मरना जड़ा गुरु तू बेमुख होके मरता है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना भाई मां सिंह दा, उन्ना दे साथियां दा, जिन्ना दा सस्कार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप कीता, उस जगह ते नाले वर दिता। इस जगह का नाम हुण मुकत सर होवेगा, जिहड़ा इत्थे आएगा प्यार शरदा नाल वो मुक्ति नू प्राप्त होवेगा, वो जो मंगेगा उसनू प्राप्त होवेगा। अज जदों भी कोई मुकत सर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू मत्था टेकदा है, वो इन्हां शहीदां नू भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले, जाना वारियां जाना दे नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नू सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती, ते सानू राह दस्या है भाई, जेड़ा सिखी गुआ के पत्त धो के जिउंदा है ओदा जीउणा

सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हें दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया, उन्होंने अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे, रहत बैत विच रवे, गुरु दे उपदेश ते चले।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं होंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी होंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहंदे ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आख्या

मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, गुण गावत के पुत्र समय सच्चे के गुणगान, गुण गावत तेरी पुत्र समैल बिरस जाए हो मैं दुख है, जन्म कर्म

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म अधूरे करमियाँ को अपनी

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज की पवित्र बाणी का है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्होंने समाज ने किया, वड्डिया लोगों ने किया, उसका जिक्र कर रहे हैं। कहते ने कि बंदगी करता हाँ, उसकी महान कृपा नाल सिमरन करता हाँ, भगती करता हाँ, पर लोगों नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का होके लोग इन मत्थे टेकते ने। हैं ये क्यों? बंदे का सुभा है, बंदा किसी की वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करता, किसी की प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करता। कबीर जी नूं ये सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पा के गंगा विच सुट दिता जाए। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझते ने, ते बंदगी वाले पुरश नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया उहदा जिक्र कीता है। पर कहिंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने उहदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। आओ प्यार।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप दे के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्दी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

आए मेरे ठाकर तुम राजोर काजी काजी बकबो हस्ती तोर। जेड़ा महावत हाथी ते बैठा सी काजी ओनू कह रहा है महावत तू अपनी सही मेहनत च ड्यूटी नहीं कर रहा ते एदी सजा तेनू भुगतनी पैगी। अरे

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। पंकज दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

हिंदू पूजा करते हैं और मुसलमान निवाज पढ़ते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, देहो राम मसीत सोई, पूजा हो निवाज हो ही। देहोरा और मसीह पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ए सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंदिर विच फर्क समझ

मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है? पुराण पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचिए दोनों दा मकसद की है। मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है, मकसद ते दोनों दा

ब्रह्म शूद वैश, और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा, और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे, चार वरन चार मजहबां

मन विच बखीली होवे, नफरत होवे, ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहिब जी बाणी द्वारा भी यही समझांदे ने कि मना विचों जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

सच छड दिता। अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जिहड़ा ये जन्म मिले है झगड़िया विच गवा लिया, और आवा गाउण दा चक्कर जिहड़ा है ये उस तरह ही

गरीब निवाज और पैसा जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म का जो असूल है ओदे बारे दसिया कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा यह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार की थी, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे भाई गुरुदास।

और जिन्हां ने इंसाफ करना, जिन्हां ने प्रजा का भला करना है, उन्हां दा हाल की? काफर, मुलहद, इरमनी, रूमी जंगी दुश्मन दारा कहंदे ने औरत नूं। वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया? राज भाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा इह काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून।

ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो ये नाराजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पे।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे, आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, और दूसरे पासे ब्राह्मण नु उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वह फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वह जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, तो फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

उपदेश है और यह उपदेश सारे वास्ते सांझा है। अणख नाल जियो, अपने धर्म च पक्के रहो। पर धर्मी होने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरिया नूं माड़ा कहिए या दूसरिया की निंदा करिए। कमियां होंदियां हन, पर उन्हां कमियां नूं दूर करना इंसान का फर्ज बनता है। जिस वेले धन गुरु नानक साहब का अवतार होया, ये झगड़े उस वेले भी सन। गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले मुल्तान देश गए, पीरां फकीरां दे नाल ज्ञान चर्चा हुई। पीरां फकीरां ने गुरु नानक साहब नूं सवाल किया, पुछन गल ईमान दी। काजी मुल्ला इकट्ठे होए, वड्डा सांग वरताया लख ना सके कुदरत कोई। धन गुरु नानक साहब नूं सवाल किया, ऐ बाबा नानक तू सारिया दा सांझा, तेनू मुसलमान भी मनदे ने, तेनू हिंदू भी मनदे ने, पर सानू इक गल दा जवाब दे।

शैताना दे रात चल पई है। ए पुली हुई दुनिया रब नू समझ नहीं सकी, क्योंकि रब दा नाम भूलड़ा दा थोड़ी है, ओ ते इंसान नू रब

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश होया उस वेले का जिक्र है। एक मुसलमान फकीर पेखन शाह पटना साहब दर्शन वास्ते आया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज छोटी उम्र है। पेखन शाह पटना साहब जद पहुंचे है, उसने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए छोटी उम्र विच। पर मन विच एक सोच पूरी कि ए रबी नूर हिंदू मुसलमान विचों किसदा पक्ष पूरद है। इस मंतव लई उन्होंने दो मिठाई दियां कुजियां ते दो कुजियां विच एक विच दुध एक विच पानी लिया। मठियाई दियां कुजियां तो भाव उन्हां दा धर्म सी ते पानी वाले कुजे दा अर्थ उन्हां मुसलमान तरिया सी ते दुध वाले नूं हिंदू मिथिया सी। मुसलमान बंदश ते शरां नूं ही धर्म समझदा है अते पानी बंदश विच पै के ही काम सवारदा। हिंदू चिट्टे कर्मां ते जोर देंदा है अते चिट्टियाई दा चिन्ह दुध ही है। पटना पुज के उन्हां ने पहला दोवें मठियाई दियां कुजियां बालक गुरु अगे रखियां। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने दोवें छोटे छोटे कोमल हाथ दोनों कुजियां ते रख दिते। फिर जद पेखन शाह ने पानी ते दुध दे भरे हुए कुजे अगे कीते तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने छोटे छोटे चरणां दे नाल दोवें ही कुजे डोल दिते। सारे हैरान हो गए पर पेखन शाह ने अगे वध के गुरु साहिबां दे चरण चुम लए और पेखन शाह ने फिर यह सारा भेद लोकां सामने खोलिया कि यह गुरु किसे एक दा नहीं, यह धर्म तां कुजियां विचों कढ़न आया है। धर्म दी यह बदकिस्मती है कि उसनों किसे ने मसीत ते मंदर तो बाहर नहीं कढ़िया। इस कलगी वाले ने हिंदू धर्म मुसलमान धर्म नालों सिर्फ धर्म ते चलन की प्रेरणा दी। सारी जिंदगी ही उन्हां दी मुहारनी यही रही। वो पहले विश्व आगू सन जिन्हां मंदिर ते मसीत पूजा ते निवाज नूं इक करके जानन दा उपदेश दिता। अकाल उस्तत विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह प्रसिद्ध सवैया है जिहड़ा आप जी सरवण कर रहे हो। देहो राम मसीत सोई पूजा हो निवाज हो ही। यह ठीक है कि सिख धर्म विच मूर्ति पूजा नहीं कीती जांदी और ना ही निवाज पढ़ी जांदी है, पर फिर भी देखो आम होंदा है दो लड़दे होन ते तीसरा बंदा तमाशा देखदा है। पर गुरु नानक दा कार उपदेश देंदा है कि भाई क्यों रब दे नां ते लड़दे हो, ठंडे जिगरे दे नाल ठंडे मन दे नाल विचार करो कि फर्क की है। एक ने पूजा करनी है, एक ने निवाज पढ़नी है, एक ने वाहिगुरु कहना है, ते फिर फर्क की है। ना वक्रे हन राह एक है, मंजिल एक है, फिर झगड़ा क्यों।

गुरु साहबा ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज में हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन। जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने, हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरशां दे राह ते चलिए और ये जिहड़ा उपदेश है इसनू अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवे।

आपे बोगद रंगला सखिए मेरा ला। अखर ने गुरु नानक साहब दे ते अर्थ किए ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने। इनू कहिंदे ने गुरगद्दी और एक रूप। एक रूप गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी गुरियाई दे की मैं किश्मे सुनावा। तीरमलिया ने सतगुरु जी बीर ना दिती, आपने पाठ रखना सी, पांच सिख कले आख्या जिन्नी पेट आखोगे वह भी देंगे, दर्शन पेट भी तुहाडी कोलों भी देंगे और बहुत सेवा करांगे, सानू महाराज दी बीर दे दिओ। असी पाठ रख के गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा अरदासा करके सिखां नू पाठ सुना के फिर वापस कर देंगे। उन्होंने मनिया ना, सगो मेहणा मारिया, जे तू गुरु है तो अपनी बाणी उचारण कर लै। ये मेहणा मारिया सिख आए, सिखां नू वार्ता पुछी, उन्हें सारी दसी ते एक सिख रो पिया। कहन लगा महाराज उन्हें तो बड़ा भैड़ा अखर आख्या है, शक कीता है तुहाडी जात ते। उन्हें आख्या जे तुसी गुरु हो ते अपने

दुख अंदोह नहीं ते ठाऊं, उथे दुख भी कोई नहीं, दुख जापदा ही नहीं, अफसोस कोई नहीं, अंदोह अफसोस नु कहंदे, ना तशवीश कोई चिंता नहीं, खिराज किसदा देना नहीं, ना माल ना कोई सामण संभाण दा फिक्र है, खौफ ना खता ना किसदा डर है, ना कोई गुनाहगारी वाली गल है, खौफ ना खता ना तरस जवाल, ना कोई तरस योग हालत है ते ना ही ढेंदी कला है, जवाल कहंदे ने थले नू आउणा, काटे वल जाना, तनजली वल जाना, डिग्रेड होना, कहंदे ने इहो जी भी कोई गल नहीं, थले आउण वाली भी कोई गल नहीं, ढेंदी कला वाली भी कोई गल नहीं, आप मोहे खूब वतन गाह पाई, मैनू ऐसा सोहना रहण वाला थां मिले है, वतन गाह, वतन कहंदे ने रहण दे देश नू, गाह कहंदे ने टिकाने नू थां नू, अब मैं खूब वतन गाह पाई, ऊहां खैर सदा मेरे भाई मेरे भरावा मेरे मित्रा उथे सदा ही आनंद बने है, कायम दायम सदा पातशाही, लोकां दीआं बादशाहियां चार दिनां विच ए भूपत सब दिवस चार के चार दिनां च अगां पिछा हो जांदियां ने, साडी पातशाही सदा वास्ते कायम है, दोम ना सेम एक सो आही, उथे अवल दोम सोम आदक बंदियां दे वखरे वखरे दर्जे कोई नहीं, उस अवस्था च जेड़े पहुंच गए ने सारे एक सार जीवन जीउंदे, एक रस जीवन जीउंदे, दुविधा विच नहीं हन, उच्चे नीवे दा कोई भेत नहीं है, आबादान सदा मशहूर, उथों दे वसण वाले सदा मस्तियां लैंदे ने, मशहूर हुंदा है सार विच मस्ती विच आया अब, आबाद उथों दे रहण वाले सदा मस्तियां च रहिंदे, ऊहां गनी बसें मामूर, उस अवस्था च वसण वाले भगत रविदास जी कहंदे ने बड़े रजे होए लोक ने, गनी कहंदे ने रजे होए वड्डे बंदे ने, पक्के होके टिकदे ने, ऊहां गनी बसें मामूर, फिर त्यों त्यों सैल करें ज्यों भावे, जिवें दिल करदा विचरदे, महरम महल सच्चे वाहिगुरु अकाल पुरख मेहरामता करन वाले दा, मेहरवान साहब दा महल है, कौन रोक सकदा उथे, ना को अटकावे, कह रविदास खलास चमारा, कहंदे ने मैं हुण आजाद हो गया, चमार हुण आजाद हो गया, खलास हो गया, किसे दी पाबंदी विच नहीं, किसे दी गुलामी विच नहीं, जो हमशहरी जेड़ा इस शहर च रहण वाला हो, इस शहर च वसण वाला हो, हमशहरी भाव मेरे शहर च रहण वाला हो, सो मीत हमारा, जेड़े एहो जी अवस्था च पहुंचे हुए ने मेरी तां उहनां नाल बणदी, ते जेड़े इस अवस्था च पहुंच जांदे ने जिन्हां नूं गम ना होवे, दुख ना होवे, अंदोह ना होवे, चिंता ना होवे, माल कठा करके सामण दी फिकर ना होवे, किसदा देना ना होवे, ओ लोक बड़े सोहणे हुंदे, ध्यान देण साहिब कहिंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे, जिन्हां नूं गुरु की संगत च बहना आ गया उहनां नाल सोहणा होर कोई नहीं हो सकदा, कई बार ऐसा तुसां वेख्या अपने आले दुआले विच छोटा जिहा बच्चा है, मां चुम चुम के कमली हो जांदी, कहिंदी मेरा लाल मेरा सोहना मेरा चन, एक दिन ऐसा होंदा है मुंडा जवान हो जांदा, मुंडा होर भी सोहना हो गया, सोहना जवान उठिया, चमड़ी ओवें अगे नालों भी सोहनी चिट्टी है, नक्श भी निखर आए ने, वस्त्र भी सोहने पाए ने, छोटे होंदे तां थोड़ा बहुत गंदा भी हो जांदा सी, हुण मैल भी नेड़े नहीं लगण दिंदा, लेकिन एक दिन हुंदा है मां कहिंदी है निज होने इहदे नाल तां ना जमदो साडे घर, क्यों कहिंदी ऐसा, क्योंकि उस मुंडे की करतूत विगड़ गई, हुण उह सोहना नहीं लगदा, प्यार करन नूं जी नहीं करदा, सुहपन पूरा है बाहरों सुहपन पूरा है, मगर मां नूं चंगा इस करके नहीं लगदा क्योंकि उहदे अंदर दा सुहपन गवाच गया, बचपन च अंदर भी सुहपन कायम सी, वड्डे हुंदिआं खराबियां करके अंदरों कोझा हो गए, और ध्यान देना बंदा वेखण नूं किड्डा सोहना ते किड्डे सोहणे वस्त्र पाए होण, जे उहदीआं अक्खां च काम है ना, ते अणजाण बच्ची कहिंदी है मां इस बंदे दी अख ठीक नहीं, ये वेखदा होर तरां, जे किसे दी बंदी बंदे दीआं अखां विच लोभ होवे ना ते बंदा चीजां अगां पिछा रख लैंदा, कहिंदा कि ते इस बंदे दी अख दा भरोसा कोई नहीं, कुछ चुक ना जा, क्योंकि लोभी अख वाला बंदा इहदी अख विच लालच टपकदा है, ते तुहाडे आले दुआले जिन्ने बंदे हिक फुला के छाती ताण के हंकार नाल तुरदे ने या किसे दी फतेह दा उत्तर नहीं देंदे, तुहानूं कोई चंगा लगा अजे तक, जेड़ा बंदा फतेह बुलाउंदा ही ना होवे, फतेह दा उत्तर ना देंदा होवे, हंकारिया होया उह बंदा तुहानूं कदे चंगा नहीं लग सकदा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार च ग्रसिया बंदा तां अपने आप नूं चंगा नहीं लगदा, किसे नूं की चंगा लगेगा, निरंकार नूं की चंगा लगेगा, गुरु नानक नूं कौन चंगा लगदा, साहिब कहिंदे ने।

तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोना। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना है। मालक दा दर केड़ा है, सो दर केहा सो कर केहा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे, ओ केड़ा दर है।

माता जी दा कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहत अगह कष्ट सहारदे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।